0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 व 102.7 मेगाहर्ट्ज़
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम टेक अहिले ठीक 8 बजे को छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: 6.9 को शानदार डिस्प्ले, AI powered camera, 2 वर्ष को वारंटी सहित Redmi A7 मा 5200 mAh तथा Redmi A7 Pro मा 6000 mAh powerful battery को साथ थप अत्याधुनिक विशेषताहरूले तपाईको मन जित्छ बारम्बार.
1: Radio Veri FM, Radio Veri FM,
2: Radio Veri FM, 98.6, 102.7 MHz.
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 2 बजेको छ.
4: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी.

0: 6.9 इंच को शानदार डिस्प्ले, AI पावर्ड कैमरा, 2 वर्ष को वारंटी सहित Redmi A7 मा 5200 mAh तथा Redmi A7 Pro मा 6000 mAh पावरफुल बैटरी को साथ थप अत्याधुनिक विशेषताहरूले तपाईको मन जित्छ बारम्बार।
1: सबैको मन सुने
2: रेडियो भेरी FM।

0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 / 102.7 मेगाहर्ज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

महाराज परीक्षित सुखदेव स्वामी ने बताने वे इसी प्रसंग को बीचवा अब यो विश्व ब्रह्मांड उत्पादन को विषय को लाई प्रश्न गर्नु भएको छ भगवान यो विश्व ब्रह्मांड कसरी उत्पादन भयो यसदेखि पछाडिबाट सृष्टि को प्रकरण में ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र यो चार जात को प्रकरण में व्याख्या गरेको छ भिन्न भिन्न मत को प्रभाव बाट यिनको विषय में प्रकाश पारी बस कि विनती करने वाला राजा परीक्षित सुखदेव स्वामी ने बड़ा गंभीर वाणी में आपको भाषा प्रस्तुत करते हुए भन्ने संबंध को कथा यह सद्या जय बोलो श्रीमद भागवत महापुराण को।